0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम
1: केट केट कूट कूडाम कदर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन कैलिकट नोटबुक विशेस यू ईद मुबारक.